0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
3: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
2: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
3: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, आपका नाम?
0: हेलो
2: हाँ
0: कार गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका?
0: सवाई माधो जी से मोनिका बोल रहे सर।
2: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो बीएस में?
0: आज कहना जरूरी है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपका आपकी प्रोवाइस में बैठे गाना।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: बचपन
4: हेलो, नमस्कार सर।
5: जी नमस्ते, नाम बताए सर आपका?
4: सागर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान से।
5: सागर जी, दशहरा मैदान से बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: गाना है तुम से।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुनाई का गाना।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ। एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE and CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
4: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
5: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ।

0: हेलो
1: हाँ जी एडमिशन कराएं।
0: हेलो
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
0: रोहित
2: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी आदर्श नगर।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: लोगो रे खरी।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:17 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परेगा ना।
1: जी एस सी म्यूजिक।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना सुनना चाहते हैं हम सरकार लो फटिया जाड़ा लगा।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार जी
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है धर्मवीर और गाने की बोल है मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गाना नहीं।
1: हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना बढ़िया लेके आए।
1: हाँ जी बताइए।
2: वो तो लेख हुआ स्टार्ट।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगाना रेडियो
3: सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद यासीन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: पाल से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बावला हूँ मैं बावला।
0: बावला सॉन्ग?
1: बावला हूँ मैं बावला।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी।
0: कहाँ से बात कर रहे
2: हो? गंगा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: ये लड़का है।
0: किस नाम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश?

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
1: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111, इसके अलावा 9462744762।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: हेलो।
8: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
7: खान।
8: कहाँ से बात कर रहे सर?
7: गंगापुर सिटी।
8: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
7: तू मेरा चांदनी, तेरी चांदनी।
8: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: संध्या चाली।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: मैं सोच रही तुझे किसी और को तो सोचे यार।
2: कुछ ये लेकर दिया। हैप्पी

0: ऐसा ही फ्रेंडशिप बैंड्स।
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, तो मैं हर कलर का एक फ्रेंडशिप बैंड ले आया।
0: लाओ दो, ये लो।
2: मैं

0: So guys, please like our song.
1: Share our song.
2: समझ में आया क्या? Like, comment, share and subscribe.
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6.
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6. गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6.

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:07 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है निशा शर्मा जी की। निशा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से, सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो,
3: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम जय किशन।
2: कहाँ से बात कर रहे?
3: मैं DS पब्लिक से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: ये मैम, ये जो हल्का हल्का सुरूर है।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडियो DS में कॉल करने के लिए। धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: सैयद खान पुरानी नाम
0: जी। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ईद के दिन गले मिल ले राजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: बन के नजर में समा जा, ईद के दिन गले मिल आजा।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: आसाराम जाना है।
2: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला।
2: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: तूने आज बनाया भगवान खिलौना माटी।
2: सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: प्रीति मीना दीदी, राधे राधे।
0: राधे राधे, कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
1: मिर्जापुर से दीदी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: इश्क तेरा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गंगापुर सिटी ब्रजमोहन महावर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैडम सुना दो, याद आ रहा है तेरा प्यार।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े पे मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जिगर मूवी से कोई भी गीत सुनवा देंगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना रेडियो डीएस।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो सर नमस्ते।
2: नमस्ते मैडम। नमस्ते
3: सर। नाम क्या है आपका?
2: रतन लाल बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी।
3: कहाँ से बात कर रहे?
2: हाँ, गंगापुर पास पुलिस चौकी के पास।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने तुझे पहचाना है।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, मोम क्या है आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: कौन सा गाना चाहिए सर?
1: तो मैडम आज मुझे भारतीय फिल्म महबूबा का गाना है ना, चलो री चलो री इसी प्यासे पर्दे की के आने से पहले पंजाके तो चली।
0: करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत
1: तो मैडम गर्मी कैसी है उधर? बहुत ज्यादा गर्मी होगी मेरे ख्याल में आपसे यहाँ।
0: हाँ सर, गर्मी बहुत तेज है
1: मैडम, इतनी थोड़ी ज्यादा ही है।
0: जम्मू तो सर थोड़ा ठंडा होएगा मौसम, जम्मू कश्मीर तो
1: देखो बोला है 7-8 दिन के बाद।
0: अच्छा, टेम्परेचर कितना है सर वैसे?
1: जम्मू मैडम 40 है, 40 है।
0: हाँ
1: थोड़ा कम है, बाहर में आपके तो राजस्थान 42 या 44 होगा।
0: 37 चल रहा है सर।
1: 37?
0: हाँ कम ही है आपका तो 44।
1: हमारा 40 है।
0: हाँ जम्मू कश्मीर के मौसम कुछ ज्यादा है।
1: ओके सर, ठीक है मैडम। ओके।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम विष्णु योगी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: मैं कर रहा हूँ नासिया कॉलोनी गंगापुर सिटी के बाद।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मुझे सुनना है तुम ही आना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
1: नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गीत सुना, पिक्चर का नाम है हनीमून और गीत के बोल है मैं आदमी तू औरत।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये बना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: कोमल,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जाती हूँ मैं जल्दी है क्या?
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करो गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कुमार माली।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: हेलो।
1: हाँ जी सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: मैं मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं जिला विदिशा नगरी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है आशिकी।
1: हाँ जी गाने की बोल।
0: दिल का आलम।
1: दिल का आलम
0: जी।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका।
1: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ना बाबा ना बाबा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं। आपकी फरमाइश करेगा ना?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कुलदीप मनगो स्वामी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे कुलदीप जी?
0: जैस्मिन संदल का पिंजरा सॉन्ग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

किस्मत मेरी सी, मैं जिंदगी ही एंजल बॉडी सी। एक किस्मत मेरी सी, मैं जिंदगी ही एंजल गौड़ी सी। जे तू छड़ के न जांदी, मैनू अकल कित्थों आनी सी। रोनी सी, रोनी सी, मेरी अख ना इदा रोनी सी। जे तू छड़ के न जांदी, मैनू अकल कित्थों आनी सी। मैनू अकल कित्थों आनी सी।

0: गुल नजर।
1: ओहो यार, तुसी आज फिर सैड हो गए। अत्थे आओ।
2: आ गया। हाँ जी।
1: आ देखो मेरी डाल के दा हंस दी रहंदी है, तुसी भी आदा हंसया करो।
2: स्माइल
1: ऑलवेज बी
2: हैप्पी।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पल। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नए तरह 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो दोस्तों, मैं पूजा जागरण, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस। हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियाँ। ग्रामीण महिलाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष, मेहनत और बदलाव की उम्मीद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज की वास्तविक तस्वीर को सामने लेके आता है। आज का विषय है ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियाँ। दोस्तों, भारत गाँवों का देश है। हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गाँव की महिलाएं परिवार, खेती, पशुपालन और घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां भी कम नहीं होती। ग्रामीण महिलाएं सुबह सबसे पहले उठती हैं, रात में सबसे आखिरी में सोती हैं। वो दिन भर घर का काम करती हैं, खेतों में मेहनत करती हैं, पशुओं की देखभाल करती हैं और परिवार की एक हर जरूरत पूरी करती हैं। लेकिन फिर भी उनके कामों को उचित सम्मान नहीं मिलता। इसका भी एक कारण है, शिक्षा की कमी। ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी जो चुनौतियों में से एक है वो है शिक्षा की कमी। आज भी कई गांवों में लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छुड़ा दी जाती है। कुछ परिवार आर्थिक तंगी के कारण बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, तो कुछ समाज के डर से, तो कुछ जगहों पर पुरानी सोच शिक्षा में बाधा बना देती है। शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं समझ पाती है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई गांवों में अस्पताल बहुत दूर दूर होते हैं, समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। सही पोषण नहीं मिलने के कारण उन्हें कमजोरी, एनीमिया और कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसमें गर्भवती महिलाओं को भी कई बार पर्याप्त देखभाल नहीं मिल पाती है। दूसरा है आर्थिक कठिनाइयां। ग्रामीण महिलाएं खेतों और घर दोनों जगह मेहनत करती हैं, लेकिन कई बार उन्हें आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। उनके कामों को काम नहीं माना जाता है, जबकि वे परिवार की आय बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर मिले तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पानी और ईंधन की समस्या। आज भी कई ग्रामीण महिलाओं को दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। कई जगहों पर खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। धुएं के कारण सांस और आंखों की समस्याएं भी बढ़ती हैं। अब बात आती है सामाजिक बंधन और भेदभाव की। कुछ क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं अब भी मौजूद है हमारे देश में। कई महिलाएं समाज और परिवार के डर से अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती हैं। वो ये सोचती हैं कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। तकनीक और जानकारी की कमी। महिलाओं को तकनीक और जानकारी की कमी का विशेष सामना करना पड़ता है। जैसे कि शहरों की तुलना में गांवों में डिजिटल शिक्षा और तकनीक की पहुंच अभी भी कम है। कई महिलाएं मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाती, जिससे वे नई जानकारी और अवसरों से भी दूर रह जाती हैं। स्वास्थ्य सहायता और समूहों की भूमिका जो होती है, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है, लोगों की सोच में भी अंतर आने लगा है। गांवों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, घर रहकर अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, बचत कर रही हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। बात आती है सरकार की योजनाओं की। सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, स्वयं सहायता समूह जैसी पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही है। लेकिन इन योजनाओं की सही जानकारी हर महिला तक पहुंचाना भी जरूरी है। परिवार और समाज की जिम्मेदारी क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केवल सरकार ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार और उनके आसपास के रह रहे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। हमें बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा और महिलाओं को सम्मान और अवसर देना होगा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशी अग्रवाल। आज आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम महिलाओं के अधिकार। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज हम बात करने वाले हैं हम महिलाओं का पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें बताया गया है। इसके अंतर्गत भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में महिला और पुरुष दोनों समान है। हमारे अगले अनुच्छेद अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल लिंग, जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(3), यह एक विशेष प्रावधान है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कानून या सकारात्मक कदम उठाने की अनुमति देता है, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा या नौकरियां, संसद में आरक्षण। महिलाओं के लिए अगला अधिकार है रोजगार में समानता, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों या रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। किसी भी महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर अपात्र नहीं माना जा सकता। हमारा अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध और जीवन का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड लाइफ। अनुच्छेद 21 सम्मान से जीने का अधिकार, यह हर नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। न्यायालयों के अनुसार इसमें महिलाओं को गरिमा और सम्मान के साथ जीने, गोपनीयता, प्राइवेसी और सुरक्षा माहौल का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक, यह अनुच्छेद महिलाओं और बच्चियों की खरीद वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम या वेश्यावृत्ति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य हमारा अगला अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो दिशा निर्देश है जिन्हें सरकार को नीतियां और कानून बनाते समय लागू करना होता है। अनुच्छेद 39A राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा जिससे पुरुष और महिला दोनों नागरिकों को आजीविका, लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन समान रूप से मिल सके। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक जैसे काम करने के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। सरकार कार्यस्थलों पर काम करने के लिए मानवीय अनुकूल माहौल तैयार करेगी और कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व राहत, मैटरनिटी बेनिफिट लीव का प्रावधान करेगी। हमारा अगला अधिकार है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिक राइट्स। अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण। स्थानीय निकाय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। राजनीतिक अधिकार पॉलिटिक राइट्स, इन संवैधानिक अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कड़े कानून भी बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉश 2013 और मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी लीव एक्ट। थैंक यू।

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है
2: मैं बुड्ढा।
1: गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन
3: मैं का
1: रेडियो DS 89।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकते हैं।

तो वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: मुहब्बत तनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: क्यों बिन बात मुंह फुला रही है यार? तेरी कसम आई फोन लिया था मैं।
1: मेरी झूठी कसम ना खावे, मैं मर जाऊंगी।
2: कोन्या मर्दी भाभी, या गलती भाई की कोनी, मैं प्रैंक करूं था।
3: लियो आपका आईफोन।
0: रुक जा, मैं कराऊं तेरे प्रैंक।
4: बाज लो रे ओ भाई।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
4: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 9.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: दोस्तों शाम के 4:30 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
2: शारदा प्रसाद प्रजापति, मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तू मेरा क्या लगे ओ साथिया, फिल्म का नाम ऊंचे लोग नई वाली, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसी राम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है चरस और गाने के बोल है राजा नजा दिल तोड़ के मुझे अकेला छोड़ के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: हेलो

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: दीक्षा।
2: कहाँ बात कर रहे हो?
3: रेलवे स्टेशन।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: चाट गेला यारी।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।
3: पूरा चलाना है इसे।
2: ओके मैम।

0: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैडम नाम है गोविंद शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गोली 315।
1: कौन से?
0: गोली 315।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: लोकेश वर्मा।
0: लोकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: बोलिए,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू दीदी।
0: जी वेलकम। तू तो मोटा सेठ फनकार हो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: धीरे धीरे मचल ए दिल बेकरार।
1: थोड़ा तेज बोलो सर, आवाज समझ में नहीं आ रहा।
0: धीरे धीरे मचल ए दिल बेकरार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: है।
1: उठो गाओ।
0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ।
0: मुझे बहुत दुख होता है, तूने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
0: मैं बताऊं ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नमस्कार सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। आजकल गर्मी के मौसम में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और जलन की शिकायत बहुत आम हो गई है। गलत खान पान और तनाव के कारण ये समस्या हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मनुष्य गैस्ट्रिक समस्या से बचने के लिए क्या करें, सटीक और व्यावहारिक जानकारी के साथ। ऋषि मीना, सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिक समस्या क्यों होती है। ज्यादा मसालेदार तला भुना खाना, अनियमित भोजन, तेज चाय कॉफी, स्मोकिंग और तनाव मुख्य कारण हैं। बचाव के प्रमुख उपाय। पहला, समय पर और सही मात्रा में खाना। रात का खाना रात 8 बजे तक पूरा कर लें। भोजन अच्छी तरह चबाकर खाएं। ज्यादा खाने से बचें। छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है। दूसरा, पाचन को मजबूत करने वाले घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। जीरा, सौंफ या अजवाइन का पानी बनाकर पिएं। ये गैस और एसिडिटी दोनों में राहत देता है। अदरक का छोटा टुकड़ा या अदरक वाली चाय पाचन बढ़ाती है। दही और छाछ नियमित रूप से लें, लेकिन ठंडा न पिएं। तीसरा, खान पान में सावधानी। मिर्च मसाले, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स कम करें। फल जैसे पपीता, केला और अनार पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। रात में दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, ये पेट की सूजन कम करता है। ऋषि मीना, चौथा, जीवन शैली में बदलाव। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। तनाव कम करें, गहरी सांस लेने या योग का अभ्यास फायदेमंद है। रात को अच्छी नींद लें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूर रहें। महत्वपूर्ण सावधानी, अगर आपको बार बार एसिडिटी, उल्टी, वजन घटना या खून वाली उल्टी मल हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम गौरी शंकर मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दुनिया बोतला पंडित।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: किरण।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: एक से है,
1: एक से है, हाँ यही एक से। ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी
3: फरमाइश। DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

सुबह की शुरुआत अगर प्रसाद से हो तो दिन कितना अच्छा जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रसाद की बहुत महत्वता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसाद होता क्या है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि प्रसाद केवल वो खाने की चीज नहीं है जो हमने भगवान को अर्पण की है। हमारा पूरा जीवन भी एक प्रसाद हो सकता है। वो हर चीज जो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाती है। वो हमारी बातें हो सकती है, वो हमारा कर्म हो सकता है, वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारा पूरा जीवन हो सकता है। तो सोचिए कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रसाद बना सकते हैं। लौटूंगी थोड़ी देर में, सुनते रहिए। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर इंसान अपने आप पे काम करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा जानना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये देखिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पे क्या पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट कर रहा है और कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो हमारी मानसिकता खराब कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता। और अगर हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लौटूंगी थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं कि अगर जीवन में ऊपर वाले की सहायता चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी, और सहायता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी की आर्थिक सहायता कर दें या कोई गरीब हमें मिले तो उसकी ही सहायता करें। हमारे आसपास कितने जने हैं जिनको हमारी जरूरत हो सकती है, जैसे बड़े बूढ़े लोग जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, अगर उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास ऐसे मौके ढूंढने लगे जहां हमको सहायता करने का मौका मिले। इसी सोच के साथ अभी यहां से जाती हूं, मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूं आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बाल को।

0: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। तेरा रे रंग, तेरा रे रंग। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस इंडिया 89.6 रेडियो डीएस। और थोड़े दिन पहले ही जापान में भूकंप आया था, उसी पे मैंने रिसर्च किया और पाया कि भूकंप को कोई इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उन्हें सांप यानी कि स्नेक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब भी अर्थक्वेक आए उससे वो 75 माइल पहले ही पहचान लेते कि अर्थक्वेक आने वाला, और कई बार तो 5 दिन पहले भी वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब गंगापुर सिटी में अगर आपका कोई दोस्त प्रेडिक्ट करे कि अर्थक्वेक आने वाला है और अर्थक्वेक आ जाए तो वो आपका दोस्त नहीं, वो सांप है। फिलहाल गाने सुनो, बैक टू बैक 4 गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: गंगापुर सिटी की धरतर
1: बस बस बस बस बस बस बस ऐसे ही अमेजिंग गाने सुनने मिलते हैं आपको 89.6 रेडियो डीएस पे। और एक अमेजिंग एक और फैक्ट है, किसी जानवर किसी एनिमल का अगर आपको ब्रेन साइज पता करना है कि उसका दिमाग वाकई में कितना बड़ा है, तो आपको सिर्फ उनके यॉन पे यानी उबासी पे ध्यान देना। जितना लंबा वो यॉन करेंगे उतना बड़ा उनका दिमाग। अगर आपके दोस्त यॉन करते वक्त सिर्फ बस तो समझ लेना कि उनका दिमाग कहीं मत जाना। बैक टू बैक अमेजिंग गाने आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे
0: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस।

0: Annapolis City के घर पर रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
1: देखो कई बार लोग परेशान होते हैं अपने हाइट की वजह से, लेकिन गानों की वजह से कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा रेडियो डीएस 89.6। और हाइट इश्यू रहता है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं लंबा नहीं हो रहा, तो उनके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि भैया फैक्ट है कि जितने भी बार एस्ट्रोनॉट्स आसमान में जाते, वो स्पेस में जाते, फिर वो जब वापस धरती पे लौट कर आते हैं तो उनके हाइट में इजाफा होता है, वो 2 से 3 इंच तक लंबे हो जाते हैं। तो अगली बार अगर आपका कोई छोटा दोस्त या आप खुद परेशान हो कि हाइट नहीं बढ़ रही है यार गंगापुर सिटी में सब मुझे तंग करते, तो एस्ट्रोनॉट बन जाओ। फिलहाल भैया आज का शो यही तक था, फिर कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। इस वक्त अमेजिंग बैक टू बैक कुछ गाने एंजॉय करो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं बात करने वाली हूं बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन की। उन्होंने कभी हमें इमोशनल किया तो कभी हंसाया। आज भी लोगों के दिलों में वो राज कर रहे हैं और बेहतरीन गाने बना रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। हम बात कर रहे थे राजेश रोशन जी की। राजेश रोशन जी ने छोटी उम्र में संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू की थी। उन्हें शुरू में ये शिक्षा उनकी माँ ने दी, लेकिन बाद में ये शिक्षा वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी से लेने लगे। कुंवारा बाप के लिए गाना कंपोज किया, गाने के बोल थे सज रही गली, जो इन्होंने 15 किन्नरों के साथ रिकॉर्ड किए थे।

सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे।

0: सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मैं मंदिर पहुँचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के, ये माँ को दे दूं मंदिर में रख दो। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाश दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम ना आया। सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा मैं वापस भागा।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: फिल्म निर्माता राकेश रोशन की फिल्मों में अमूमन संगीत उनके भाई राजेश रोशन का होता है। रोशन ने भाई राकेश की फिल्मों के अलावा अन्य फिल्मों में भी संगीत दिया है। 1975 में प्रदर्शित जूली फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई और सफर आज तक जारी है। इस फिल्म में दिल क्या करे जब किसी को, माई हार्ट इज बीटिंग, ये रातें नहीं पुरानी और जूली आई लव यू जैसे गाने में रोशन का संगीत श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। जूली की सफलता के बाद राजेश रोशन को शुरुआत में ही नई पहचान मिल गई थी। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। 70 और 80 के दशक में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में पूरे शबाब पर थी, उस समय किसी भी नए संगीतकार को हिंदी सिनेमा में स्थापित होना आसान नहीं था। 1975 में K.S. सेतु माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जूली ने राजेश को हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस फिल्म के संगीत की खूब तारीफ हुई और राजेश रोशन को इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब भी मिला। ये पुरस्कार राजेश रोशन ने एक बार फिर साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है के लिए जीता। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी 89.6 डीएसएफएम पे। मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना अभी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या, कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसो मत मेरी बात पे। चलो आपके लिए मैं चार अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: நன்றி நமஸ்காரம்.
1: अरे अरे अरे अरे भैया सांस तो ले लो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम गुनगुनाते कैसे? अच्छा आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। आँख में कैसी, बस बस बस बस बस इतना काफी। अब फैक्ट ये है भैया कि गुनगुनाना तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी दोनों उंगलियां लेके अपने नाक को बंद करोगे, चलो करो करो करो, दोनों उंगलियां पकड़ो, नाक को बंद करो, मुंह से सांस लेना बंद करो और उसके बाद गुनगुनाने की कोशिश करो तो गुनगुना नहीं पाओगे। लो मैं करके सुनाता हूँ। बस बस बस भैया सांस तो ले लो, फिलहाल गाने सुनो। प्ले करता हूँ मैं आपके लिए बैक टू बैक चार गाने।
2: गंगापुर स्थिति की धरती, रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो डीएस रेडियो डीएस।
1: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे, तो हाँ सुनो ध्यान से, पेश करता हूँ आपके खिदमत में अलविदा। अलविदा कह ही देते जाते वक्त, अलविदा कह ही देते जाते वक्त, कब तक एतबार करते रहे हम, और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मत मनाओ गम भैया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, कहाँ रेडियो डीएस 89.6 पे,
0: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ। अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, जो सन 1960 में आई थी। इस गीत में मीना कुमारी राजकुमार के साथ अपने खामोश प्रेम के खो जाने का ताना नादिरा जी को इस तरह देती है। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की टीम ने इस गीत को कुछ ऐसे अंदाज में बनाया है कि आज भी पिकनिक के लिए ये पसंदीदा गीत माना जाता है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।